चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: शनिवार 9 मई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम

आप सभी का स्वागत है और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार, यानी आपको अनीता बरार का नमस्कार। सबसे पहले आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं, SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वरंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज शनिवार के दिन आप हमेशा की तरह सुनेंगे बॉलीवुड के समाचार, कुछ बात भारत की जो बन जाती है एक मिसाल हम सबके लिए, और गाने तो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे ही। आप भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप मुझे बताएंगे अपने संदेशों के साथ। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले न्यूज फ्लैश। नमस्कार, शनिवार 9 मई के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। दक्षिणपंथी वन नेशन पार्टी आज फेरर की लोअर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है। फेरर दक्षिण न्यू साउथ वेल्स का एक बड़ा खेती और माइनिंग वाला क्षेत्र है। अगर वन नेशन सफल होती है तो ये लोअर हाउस सीट के लिए उसकी पहली जीत होगी। चुनाव से पहले हुई पोलिंग में वन नेशन के उम्मीदवार डेविड फार्ले इस सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार मिशेल मिलथॉप के साथ कांटे की टक्कर में थे। केंद्र सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रही अस्थिरता और ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर चल रही चिंताओं के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल की अच्छी सप्लाई बनी हुई है। क्लाइमेट चेंज और एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बॉविन का कहना है कि अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में 4.5 अरब लीटर से अधिक फ्यूल आने का कॉन्ट्रैक्ट है, जो पिछले हफ्ते से 0.5 अरब लीटर अधिक है। उन्होंने कहा कि अभी 55 फ्यूल शिप ऑस्ट्रेलिया के लिए आ रहे हैं, जबकि देश के पास 29 दिनों का जेट फ्यूल रिजर्व भी है। न्यू साउथ वेल्स सरकार पिछले साल के बोंडाई हमले के बाद बंदूक कानूनों को सख्त करने और अपनी फायर आर्म रजिस्ट्री में बड़े बदलाव करने जा रही है। मिन सरकार एक्स्ट्रा स्टाफ, सिस्टम अपग्रेड और मौजूदा फायर आर्म लाइसेंस के पूरे ऑडिट पर लगभग $40 मिलियन खर्च करेगी। गन लाइसेंस रखने की अवधि को 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया जाएगा, जिसमें और सख्त जांच होगी और एक व्यक्ति कितने फायर आर्म रख सकता है इस पर नई सीमा तय की जाएगी। यूक्रेन से ड्रोन हमलों के खतरे की वजह से रूस ने सालों में अपनी सबसे छोटी विक्ट्री डे परेड की है। इस साल की परेड में रेड स्क्वायर पर कोई टैंक या दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं होगा, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से रूस की विशाल मिलिट्री को दिखाने के लिए किया जाता था, जिसमें उसके न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं। 9 मई की परेड रूस के सबसे सम्मानित नेशनल हॉलीडे को दिखाती है। 1945 में नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की जीत का ये जश्न है। और भारत में पश्चिम बंगाल में पहली बार BJP की सरकार बनने जा रही है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में एक समृद्ध राजनीतिक परिवार में जन्मे शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति में जाना माना नाम था। शुभेंदु अधिकारी ने छात्र परिषद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करके 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी तो वो TMC से जुड़ गए थे। दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और विधायकी से त्यागपत्र दे दिया और BJP के साथ जुड़ गए। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। न्यूज फ्लैश के बाद आइए अब बात की, क्या आप वेतन

0: वृद्धि चाह कर भी उसकी मांग करने से झिझक जाते हैं? तो प्रस्तुत है एक रिपोर्ट और इस अंश में जानिए कि क्यों नहीं मांगते लोग वेतन वृद्धि और क्या है वेतन वृद्धि की मांग के कुछ तरीके। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रही हैं नताशा कौल।
1: नमस्कार, मैं हूं नताशा कौल SBS हिंदी टीम से। हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में लोगों का वेतन लगभग स्थिर बना हुआ है और बढ़ती मुद्रास्फीति व जीवन यापन की लागत ने श्रमिकों की स्थिति को और कठिन बना दिया है। इसी को देखते हुए पर कैपिटा नामक थिंक टैंक ने बताया है कि ऑस्ट्रेलियाई अभी भी 2012 से 2022 के बीच वेतन में ठहराव के असर से जूझ रहे हैं। ऐसे में वेतन वृद्धि की मांग कैसे करनी चाहिए, सुनते हैं इस अंश में।
2: मेरा नाम सुनील है और मैं मेलबर्न में रहता हूँ। सैलरी इंक्रीज के बारे में मुझे एक्चुअली ऐसा मानना है कि मैं नहीं बोल पाता हूँ, मुझे शर्म आती है, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने जॉब पे अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दूँ और फिर मैनेजर अपने हिसाब से डिसीजन ले। बट एज फार एज मेरे द्वारा थोड़ा सा बहुत शाही और मतलब शर्म नहीं बोल पाता हूँ।
1: वेतन वृद्धि की मांग करना भले ही कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन एक शोधकर्ता का कहना है कि इसमें सफलता की संभावना बढ़ाने में मदद करने वाली कुछ तरकीबें हैं। अप्रैल में प्रकाशित फाइंडर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 5 में से एक ऑस्ट्रेलियाई ने वेतन वृद्धि का अनुरोध किया, जिसमें पुरुषों द्वारा महिलाओं की तुलना में वेतन वृद्धि की मांग करने की संभावना अधिक थी। रिक्रूटमेंट कंपनी हेज से डेविड काउली ने SBS न्यूज पॉडकास्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग सीक्रेट्स को बताया कि बहुत से लोग पैसे के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे अस्वीकृति से डरते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि वे वेतन वृद्धि का विषय उठाएं। लेकिन इस विषय को अपने बॉस के सामने रखने का एक सही तरीका है। डेविड कवली का ये भी कहना है कि कर्मचारियों के लिए ये साबित करना जरूरी है कि वे वेतन की मांग क्यों कर रहे हैं, इसलिए ये मांग सामने रखने से पहले उन्हें शोध कर लेना चाहिए और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी मांग उनके काम के स्तर का समर्थन करती है। वे कहते हैं कि कर्मचारियों के पास कोई निश्चित आंकड़ा या प्रतिशत होना चाहिए जिससे वे अपने एम्प्लॉयर के सामने रख सकें। अगर किसी कारणवश वेतन वृद्धि संभव ना हो तो किसी वैकल्पिक मांग को पहले से ही तैयार रखना मददगार हो सकता है। उनका कहना है, वेतन ही सब कुछ नहीं होता। असल में हमारे द्वारा किए गए कई शोध और मिले फीडबैक से ये बात सामने आई है कि वेतन जरूरी है, लेकिन समय की आजादी और नौकरी में लचीलापन उससे भी कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये पैसों से भी ज्यादा मूल्यवान है।
3: मेरा नाम गीतांजलि है और मैं काफी आफ्टर कोविड काफी टाइम से वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करती हूँ, और ये ऑप्शन इसलिए मेरे लिए बेटर है कि मेरे को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनको लुक आफ्टर के लिए टाइम मिल जाता है। दूसरा ये है कि सैलरी बेशक

0: Hits from Home.
1: What you think of my new saddle, Lizard?
2: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
1: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
2: What else have you got on here?
1: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
2: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
1: All right, hang on tight to my love handles.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
4: उन्हें आपको सोचने पर मजबूर किया है क्योंकि उन नौकरियों में एक महत्वपूर्ण पहलू है अधिक वेतन. इसके अलावा वे कहते हैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट उपलब्ध है जो आपको ये समझाने में मदद करेगा कि किस तरह बातचीत की संरचना करनी चाहिए. लेकिन असल में जो चीज़ आपकी बातचीत को बेहतर बनाएगी वे है आपकी इमोशंस, यानी आप उस बातचीत को किस तरह पेश करते हैं और उसे कैसे शुरू करते हैं. आपको बता दें नवंबर में प्रकाशित ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के विश्लेषण में पाया गया है कि पिछले 3 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई श्रमिकों के जीवन स्तर में लगभग $8,000 की गिरावट आई है.
5: हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर. आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी.
6: तो श्रोताओं आप ये रिपोर्ट तो सुन रहे थे. दोस्तों जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर बिना कुछ मांगे जो हमें प्यार देती है वो सिर्फ माँ है. हमारे लिए दिन को रात और रात को दिन करने वाली वो सुबह की अलार्म होती है और रात की प्यारी सी नींद की गोली भी. तो इस मदर्स डे यानी कल 10 मई को आप हैप्पी मदर्स डे तो कहेंगे ही, लेकिन क्या खास कहना चाहेंगे? क्योंकि हर माँ तो खास होती है और आपकी भावनाएं भी खास होंगी. क्या आप उसे मेरे साथ साझा करेंगे? 0439-799-767. आपके संदेशों की प्रतीक्षा रहेगी और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद.
7: SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर. चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम. SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे.
8: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें. SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं.
7: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं. देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर. SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं. सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं. पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए 7 दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें.
9: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
10: SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect.
6: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार. दोस्तों आगे बॉलीवुड के समाचार और गाने तो होंगे ही, और मैं आपसे जानना चाहती थी कि माँ के लिए क्या कोई ख़ास बात है जो आप

0: कहना चाहेंगे, यानी माँ के लिए वो एक शब्द या एक कोई पंक्ति क्या हो सकती है जो उन्हें सबसे अधिक खुशी देती होगी? आप सोचिए और मुझे अवश्य लिखिए। और अभी ऐसा भी होता है ना कि कई बार जो आप बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते, और यूं लगता है कि पता नहीं सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन फिर कोई एक रास्ता आपको मिलता है और आप कुछ और कर लेते हैं और बिल्कुल बहुत सफलता के साथ में कर जाते हैं उस वो चीज़ जो आपने पहले कभी सोची ही ना हो। तो बस ऐसी ही है ये हमारी अगली रिपोर्ट, यानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने चुना एक ऐसा रास्ता, अलग से रास्ता। क्या था वो रास्ता, उसके बारे में है ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आपको प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए फैसल फरीद। तो आइए जानते हैं क्या होता है हमारे जीवन में।
1: रंगों का त्योहार बीते अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी ठीक से रंग छूटा भी नहीं होगा, लेकिन आज आपको कुछ ऐसी रंगों की दुनिया एक दिखाते हैं जिसमें बच्चों की जिंदगी के सपने रंगीन हो गए हैं। मिलिए दिल्ली के कलाकार मनमौजी से। जी हाँ, इनका नाम ही मनमौजी है। पहले वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, हालात सही नहीं होने के कारण वो क्रिकेटर नहीं बन पाए। फिर उन्होंने कला की तरफ अपना रुख किया, रंगों की दुनिया में आ गए। उनके मन में भी हमेशा से ये रहा कि बच्चों के सपने अगर वो अपने सीमित संसाधनों से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने काम के माध्यम से उनके इन सपनों को पंख तो दे ही सकते हैं। मनमौजी ने वही किया। स्लम्स में जहाँ पर गंदगी और जीने के सीमित संसाधन होते हैं, वहाँ पर मनमौजी ने अपना ब्रश और रंग उठा लिए और उन स्लम्स की बेजान सी दीवारों को जीवित कर दिया। इन बस्तियों की दीवारों पर उन्होंने सपनों के रंग भर दिए, पेंटिंग्स बनाई जिसे आप स्ट्रीट आर्ट कह सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी अलग थी। जैसे एक बच्चा वो स्पेस जाना चाहता है पर उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं, तो मनमौजी ने एक दीवार पर उस बच्चे की स्पेसशिप में तस्वीर बना दी और वो अंतरिक्ष में है ऐसा उसको आभास दे दिया। ये मात्र एक वॉल पेंटिंग नहीं बल्कि इन वंचित बच्चों के सपनों की उड़ान है। मनमौजी अपनी इस यात्रा के बारे में बताते हैं।
2: मेरा नाम मनमौजी है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में नांगलोई प्रेमनगर। और मतलब मेरा बॉर्न यूपी का है बट मैं बड़ा दिल्ली में ही हुआ हूँ। और आर्ट का पैशन मतलब मेरे को बचपन से नहीं था, कुछ घर की सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, फाइनेंशियल इश्यूज थे कुछ, तो जिसकी वजह से मैं मतलब आर्ट में गया। और इसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है कि कैसे मैं आर्ट में गया था। तो जिसमें था कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मतलब मेरे को क्रिकेटर बनना था वैसे, और क्रिकेटर बनने के लिए मतलब मैं क्रिकेट विकेट खेलता था तो मेरे को घर से थोड़ी डांट पड़ती थी कि क्रिकेट मत खेल और ये अपने पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसे करके मेरा वो था क्रिकेट के लेके। तो क्रिकेट में क्या हुआ, मैं गली क्रिकेट खेलता था तो एकदम से एक दिन क्या हुआ कि मेरी बॉल एक अच्छे को लग गई, तो उसकी मम्मी ने थोड़ा गली में थोड़ा वो कर दिया कि बवाल मचा दिया कि ऐसे ये लोग खेलते हैं, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है या कुछ ऐसा, जिसकी वजह से मेरी मम्मी को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने बोला कि तू तेरी वजह से हमें इतना सुनना पड़ गया ये वो, तू क्रिकेट क्यों खेल रहा है तेरे को मन। तो तब से मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया और तब से लेकर आज तक मैं क्रिकेट खेला ही नहीं। और फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मेरा स्कूल 12 PM था स्टार्ट होता था, तो मेरी गली के कुछ बच्चे थे जो 10 बजे ही कहीं चले जाते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा यार कि तुम लोग कहाँ जाते हो, तो उन्होंने बोला हम यार ऐसे ऐसे आर्ट सीखने जाते हैं। तो मेन मेरा प्रॉब्लम तो वही था ना, पढ़ाई होने का, कि फाइनेंशियल पैसेज नहीं होते थे कि मैं ट्यूशन या ऐसे कहीं पर जाके पढ़ पाऊँ। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि यार कितने पैसे लगते हैं सीखने के, तो उन्होंने बोला सीखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, 1 रुपये लगता है, वो भी पूरे साल का कार्ड बनता है। तो मैंने कहा चलो ये तो मेरा शॉर्ट हो गया फिर। तो मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए उस सेंटर में गया सीखने के लिए जिसका नाम नेशनल बाल भवन है जो कि दिल्ली में ही है, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस दिल्ली के काफ़ी जगहों पर हैं, तो हमारे नांगले में भी एक ब्रांच है। तो मैं वहाँ गया सीखने के लिए, मतलब मैंने मेरा टाइम

0: पास हो जाएगा, क्रिकेट तो मैं खेलता ही नहीं था। तो वहां पर गया तो वहां पर मैंने देखा कि लोग थोड़े सीनियर थे मेरे वहां पर, और तो मतलब मैं ऐसा एक वहां पर एक मेन रूम होता था जहाँ पर लोग पेंटिंग करते थे, तो मैं वहां जा नहीं पाता था, वहां मेरे को जाने में कहते थे जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे को आर्ट नहीं आती थी। तो फिर मेरे को ऐसे अंदर से मेरे को लगा कि नहीं यार मुझे इस रूम में जाना है, मुझे आर्ट सीखनी है। तो मेरा इंटरेस्ट आर्ट में आया कि मैं आर्ट करूं। और फिर क्या हुआ कि एक दिन जो मेरे गुरुजी हैं उनका नाम है भूपेंद्र सिंह गुरंडा, तो उनको शॉर्ट भूपी बोलते हैं, तो वो एक दिन आए हमारे क्लास लेने के लिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी को देखा लाइव ऐसे आर्ट करते हुए, तो जो भी उनसे कुछ भी पूछ रहा था ना इंसान, तो वो बिना देखे कुछ भी बना दे रहे थे। कोई बंदर पूछ रहा है, कोई कुत्ता पूछ रहा है, कोई इंसान, तो वो बिना देखे बना दे रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो मैजिक है, मतलब इस बंदे के पास मैजिक है और ये कैसे बिना देखे सारी चीज बनाता है। तो मुझे लगा कि यार सब लोग इसके पीछे पीछे घूमते हैं, तो मेरे को भी ना सीखना है और मुझे इन भैया से बात करनी है, और वो उसी से बात करते हैं जो लोग आर्ट करते हैं। तो मैं उस दिन से मेरे को इंटरेस्ट आ गया कि मेरे को आर्ट करना है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया स्केचिंग करना, और लाइक स्टेशन से जाके स्केचिंग करना। फिर मैंने एक बार उनको दिखाया अपने गुरुजी को, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे। जब उन्होंने अप्रिशिएट किया तो मुझे लगा नहीं मुझे अब करना चाहिए। और फिर जब मैं मेरे को एक चीज़ और पता थी कि मैं इसके अलावा और मेरे पास कुछ है नहीं जो मुझे फ्री में मिल जाए, क्योंकि बाकी सभी चीज़ों में और पढ़ाई में पैसे लगते हैं जो कि हमारे घर में होते नहीं थे। तो ऐसा करके मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरे को लगा कि अब मुझे उस रूम में जाना है, उस रूम में जाने के लिए मैंने पेंटिंग सीखी, तो फिर मैं फाइनली उस रूम में गया। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैंने अपनी आर्ट स्टार्ट करी थी।
1: पेंटिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनमौजी की हर पेंटिंग एक कहानी, एक सपना होती है। कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है और उसी के सिंगर की तरह पेंटिंग मनमौजी दीवारों पर बना देते हैं। कोई बच्चा रैपर बनना चाहता है तो उसकी बादशाह के साथ पेंटिंग दीवार पर बनाती सुंदरता भी आ जाती है, साफ सफाई भी हो जाती है। यही नहीं, बस्ती में वो बच्चा एक सेलिब्रिटी भी बन जाता है।
0: ऐसा कॉन्सेप्ट चलाना है कि जिससे कि बच्चे को मैं मोटिवेट कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि किसी बच्चे को, सबसे पहला पेंटिंग मैंने बनाया था कि एक बच्चे को, वो डिसेबल चाइल्ड था, तो उस बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनना था, मतलब उसको चांद स्पेस में जाना था। तो अब मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं कि मैं उसको रियल में स्पेस पे लेके जाऊँ, लेकिन मेरे पास एक कला है जिससे मैं उस बच्चे को फील करा सकता हूँ कि वो वहाँ जा सकता है, या उसको मोटिवेट कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहला पेंटिंग उसी का बनाया था, उसका पोर्ट्रेट बनाया था कि वो स्पेस में है और वो स्पेस में सब कुछ फील कर रहा है। तो जब हमने उसको दिखाया और उसको वो चीज़ करी, तो वो काफ़ी इंस्पायर हुआ, वो काफ़ी खुश हुआ। तो ड्रीम्स ऐसा मेरे आर्ट के थ्रू, क्योंकि मैं स्ट्रीट आर्ट करता हूँ। स्ट्रीट आर्ट मतलब होता है कि एक तरह की हम आर्ट नहीं कर रहे, हम एक तरह से आवाज़ उठा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। मतलब एज एन आर्टिस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ पेंटिंग करना ही नहीं, हमें ऐसी पेंटिंग करनी है जिससे लोग जागरूक हो, या वो चीज़ों पे काम करना है जो चीज़ लोग ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, घर से ही उनको डीमोटिवेट किया जाता है कि उनसे ज़्यादा किसी और बच्चे पे ध्यान दिया जाता है कि वो कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे करके मैंने डिसेबल चाइल्ड्स को लेकर स्टार्ट किया था। तो मैंने जब ये पेंटिंग बनाई और जब मैंने देखा उसका रिएक्शन, देखा उसका कि बच्चे का कितना वो खुश हुआ, तो मेरे को लगा मुझे और पेंटिंग्स बनानी चाहिए ऐसी जो बच्चों को मोटिवेट करें। और मतलब एक तरह की मेरा टैगलाइन भी यही है, वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स, मतलब मैं हम आवाज़ हैं, ये पेंटिंग नहीं है, ये उस बच्चे की आवाज़ है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे अभी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं है, पर मेरे अगर 5,000 भी फॉलोअर्स हैं, तो अगर 5,000 में से कोई भी एक ऐसा इंसान उस पेंटिंग को देख ले जो कि उस बच्चे की मदद कर सके, और अगर उसकी मदद हो जाएगी तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी और उस बच्चे के लिए भी। तो मैंने ये सोचकर वो पेंटिंग स्टार्ट करी है। और फिर मैंने काफ़ी बच्चों की ऐसी पेंटिंग बनाई जो कि कोई पायलट बनना चाहता है, तो उसका पायलट के मैं उस बच्चे को ही लेकर उसको उस यूनिफॉर्म में और उसको उस जगह पर बनाता हूँ जहाँ पर उसको फील होता है कि नहीं मैं वहाँ पर हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट है जो मतलब अभी मैं कर रहा हूँ काम इस पे। इसमें हम प्रॉपर बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं और वो ओरिजिनल स्टोरी होती है बच्चे की, कोई फेक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमने खुद से ऐड किया है। तो अभी मैंने लास्ट एक और पेंटिंग बनाई थी, एक बच्चा है जो सिंगिंग करना चाहता है लेकिन वो सुतलाता है, और उसको सिंगिंग करनी है, उसको सिंगर बनना है। वो भी स्पेशल चाइल्ड है, मतलब दिमाग से थोड़ा सा उसको ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती हैं, बट उसके अंदर वो सपना है, उसके अंदर वो चीज़ है, वो करना चाहता है।

0: तो उसको लेकर भी मैंने पेंटिंग बनाई थी, जिसमें मैंने दिखाया था कि वो बच्चा लिटिल चैंस करके तो वो आता है जी टीवी पर शो आता है बड़ा, तो उस शो में वो बच्चा खड़ा होकर ना माइक पे तो गाना गा रहा, तो वैसा मैंने पेंटिंग बनाया था, मेरे पास है वो फोटो। तो ऐसा मेरा मतलब ये रहता है कि किसी बच्चे का सपना है तो उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, या मेरी पेंटिंग के थ्रू अगर कोई ऐसा एनजीओ या कोई ऐसा इंसान देख ले जो उस बच्चे तक पहुंच सके और उसका सपना शायद पूरा हो जाए, मतलब एक तरह की होप है ये।
1: मनमोजी का काम सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन सोचिए वो एक ऐसी दुनिया में बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने की कोशिश करते हैं जहां पर उनके सपने रंगीन हो जाते हैं। जिस बस्ती में लोग कला, आर्ट, पेंटिंग नहीं जानते, वहां पर वो ये कार्य करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि वहां पर लोगों के लिए सबसे पहले ये होता है कि कैसे जीवन चलाया जाए, बाकी सब तो बात की बातें हैं।
0: स्लम्स के, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, सबसे पहले तो मैंने वहीं ऑब्जर्व किया कि मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना ऐसे एरियाज में रहते हैं कि हमें पता ही नहीं होती हैं। जैसे कि अगर एक कलाकार है, जैसे मैं आर्ट करता हूँ, तो आर्ट किसी को पता ही नहीं है कि आर्ट होती क्या है, इसका फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। और मतलब मेरे दिमाग में, मैं मुंबई गया था कुछ सालों के लिए, तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने क्या ऑब्जर्व किया था कि मैं मुंबई गया, मुंबई में मैं 2 साल रहा, 2 साल बाद जब मैं यहाँ वापस आया तो मेरे दोस्त को मैंने कॉल किया कि यार मैं ऐसे से आया हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि यार यहाँ पर ना तू उस एक यहाँ पर 10 नंबर गली है, यहाँ पर सारे झुग्गी के लोग रहते हैं, मतलब उन्होंने अपने अपनी झुग्गियाँ डाल रखी हैं किसी की, तो उसने बोला ना तू उस गली से मत आई, वो गली बहुत बेकार है और तू वहां से मत आई। तो मेरे को मतलब ऐसा लगा अंदर से कि यार ऐसा ये क्यों बोल रहा है, मुझे जाना चाहिए, वहीं से ही जाऊंगा और मैं देखूंगा कि ऐसा है क्या वहां पर। तो मैं उस गली से आया तो मैंने देखा काफ़ी गरीब लोग हैं और काफ़ी वहाँ पर गंदगी है और लोग काफ़ी मुश्किल से अपने जीवन जी पा रहे हैं। तो मेरे को देख के थोड़ा ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब एक एज एन आर्टिस्ट मैं इतनी दुनिया में पेंटिंग कर रहा हूँ, इधर उधर पेंट कर रहा हूँ, लोगों की जगह को खूबसूरत बना रहा हूँ, और एक मेरा ही एरिया है जहाँ पर, एक ऐसी गली जहाँ पर लोग जाने को मना करते हैं या पसंद नहीं करते, तो क्यों ना मैं इसको चेंज करूं, स्टार्ट करूं। तो मैंने सबसे पहला स्टार्ट वहां से किया, वहां की गली में मैंने पेंटिंग कराई, एक सफाई करवाई एनजीओ से बात करके। फिर आया बच्चों का सीन, जो मेरा कॉन्सेप्ट है ड्रीम कम ट्रू करके, जो बच्चे, तो क्या है कि यहाँ मैं एक अपने टाइम पे मैं भी बहुत सपने देखता था कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लेकिन फाइनेंशियली वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ऐसे एरियाज में, स्लम्स में क्या होता है कि ना नॉलेज ही नहीं होती है और ना ही पैसा होता है उस चीज़ को पूरी करने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट चलाना है कि जिससे कि बच्चे को मैं मोटिवेट कैसे कर सकता हूँ।
1: संभव है किसी बच्चे का सपना साकार हो, वो इन रंगीन पेंटिंग से निकलकर वास्तविकता में कुछ करे, बस यही उम्मीद है। लेकिन मनमोह जी, जिनके लिए दीवार एक कैनवस है और रंग में सपने हैं। लखनऊ से फैसल फरी।
2: तो आप सुन रहे थे ये रिपोर्ट, यानी कभी कभी जो आप चाहते हैं वो तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास कुछ और विकल्प आ जाते हैं। आपसे जानना चाहती थी कि मदर्स डे के लिए माँ के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे। तो हमारी श्रोता हेमलता पुरोहित जी ने हमें लिखा है कि उनकी माँ उनके लिए सब कुछ हैं, वो उनकी गुरु हैं, उनकी दोस्त हैं, उनकी काउंसलर भी हैं, यानी सब कुछ माँ हैं। और कुमार जी कहते हैं कि ये उनकी माँ रहीं जिन्होंने उनके करियर के विकास का रास्ता दिखाया। कह सकते हैं कि माँ ने जीवन की सीख दे दी। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी माँ ने आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या दी है? अवश्य मेरे साथ साझा करें और अपने बाकी श्रोताओं के साथ में भी साझा करें कि क्या थी वो सीख जो आपकी माँ ने आपको दी। मिलती हूँ इस अंतराल के बाद।
3: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें। SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
4: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वॉइसलैंड चैनल 31 पर। चैनल 33 पर SBS फूड, जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
3: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
4: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार, SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए 7 दिन 24 घंटे, चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
5: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
4: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। श्रोताओं, मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपके माँ ने आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या दी है। और हाँ, इससे पहले कि हम बॉलीवुड की दुनिया में चलें यानी वहाँ की खबरें जानें, ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कोई गाना है जो आपको सबसे अधिक आपकी माँ की याद दिलाता है? लिखिएगा मुझे और हम चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में।
6: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं जैकलीन फर्नांडिस की। कांस फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण में इस बार एक बार फिर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस नजर आने वाली हैं। 12 से 23 मई 2026 के बीच फ्रांस में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जैकलीन फर्नांडिस कांस के रेड कारपेट पर अपने ग्लैमरस और यूनिक अंदाज में नजर आएंगी। बीते कुछ सालों से वो लगातार इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। ऑस्कर 2027 के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के नियमों में बदलाव किया है। इसका असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। नए नियमों के बाद अब किसी देश की आधिकारिक एंट्री ही ऑस्कर तक पहुंचने का इकलौता रास्ता नहीं रहेगा। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई फिल्म कांस, वेनिस, टोरंटो, बर्लिन, संडास या बुसान जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में टॉप अवार्ड जीतती है तो वो सीधे ऑस्कर के इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी उस फिल्म को अपने देश की ऑफिशियल एंट्री बनने की जरूरत नहीं होगी। फिल्म भूत बंगला इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का नया गाना ओ री ओ सावरिया रिलीज किया है।
7: महके, महके सपनों में उलझे हैं निंदिया, ओ री ओ सावरिया, लागे ना लागे जिया, ओ री ओ सावरिया।
6: यश की फिल्म टॉक्सिक के 4 जून को रिलीज न होने की वजह से डेविड धवन ने अपनी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट में बदलाव किया है। अब ये फिल्म 22 मई के बजाय अपनी पुरानी तारीख 5 जून को रिलीज होगी। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में हैं। ये रोमांटिक कॉमेडी है। वहीं मई 2026 में सिनेमा घरों में 10 बड़ी फिल्में दस्तक देने वाली हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 10 जुलाई 2026 को जापान में रिलीज की जाएगी। जापान में इस फिल्म को ऑपरेशन धुरंधर के नाम से रिलीज किया जाएगा। धुरंधर से पहले जापान में रणवीर सिंह की गली बॉय, गोलियों की रासलीला, रामलीला और पद्मावत फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को ग्लोबली रिलीज हुई थी।

पंजाबी गायक सतिंदर सरताज की गायकी की दीवानगी पूरे विश्व भर में देखने को मिलती है। फिल्म धुरंधर द रिवेंज में उनके गाने जाइए सजना के बाद गायक की लोकप्रियता नए स्तर पर पहुंच गई। सनी देओल ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो की सबसे खास बात उनका बैकग्राउंड में चल रहा गाना है। गाड़ी की इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सनी देओल सतिंदर सरताज का मशहूर पंजाबी गाना सजन राजी सुन रहे हैं। ये गाना सतिंदर के एल्बम हजारे वाला मुंडा में शामिल है। इस गाने के गहरे बोल और शांत संगीत के बीच सनी देओल काफी रिलैक्स्ड और खुश नजर आए।

0: गायक संगीतकार हिमेश रेशमिया अपने नए गाने शराब से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस गाने में हिमेश के साथ मानुषी छिल्लर नजर आ रही हैं और इसका म्यूजिक वीडियो पीयूष शाजिया द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है। हिमेश ने अपनी आवाज दी है जबकि संगीत रजत नागपाल ने तैयार किया है और गीत राणा सोताल ने लिखे हैं। सनी देओल को जब भी मौका मिलता है वे अपने पिता धर्मेंद्र को पुरानी फोटो के जरिए याद करते रहते हैं। अब उन्होंने धर्मेंद्र की फिल्म धर्मवीर की एनिमेटेड वीडियो शेयर की है। वीडियो में धर्मेंद्र का ही मैन वाला अवतार दिख रहा है और उनकी और जितेंद्र की जोड़ी भी शानदार लग रही है। धर्मवीर धर्मेंद्र के करियर की टर्निंग प्वाइंट रही थी। इसी फिल्म में धर्मेंद्र के बचपन का किरदार बॉबी देओल ने निभाया था। फिल्म को यूनाइटेड किंगडम के 5 शहरों में भी रिलीज किया गया था। फिल्म ने यूके में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए लाखों में कमाई की थी। सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपना ओरिजिनल ट्रैक रहना रिलीज किया है जिसे उन्होंने डॉव गीक के साथ मिलकर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्ग ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें बॉलीवुड की फिल्में देखना काफी पसंद है। पवन लूथरा के साथ इंडियन लिंक पॉडकास्ट में जब उनसे पसंदीदा बॉलीवुड फिल्मों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। शाहरुख की फिल्म चक दे इंडिया को अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया और कहा कि इसका खास कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि इसके कई हिस्से सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में शूट हुए थे। जब से थ्री इडियट्स के सीक्वल का ऐलान हुआ है तब से फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार कंफर्म हो गया है कि एक्टर आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ लौट रहे हैं। आमिर खान ने थ्री इडियट्स के सीक्वल का कंफर्मेशन खुद दिया है और बताया कि फिल्म की कहानी 10 साल आगे बढ़ेगी। साल 2009 में आई थ्री इडियट्स को राजकुमार हिरानी ने बनाया था और विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। राजकुमार हिरानी इस समय थ्री इडियट्स 2 पर काम कर रहे हैं। सीक्वल में ओरिजिनल फिल्म का जादू बरकरार है, इसके साथ ही इसमें कुछ नया भी देखने को मिलेगा। बहुप्रतीक्षित पौराणिक महाकाव्य कृष्णावतारम जो भगवान कृष्ण के जीवन और विरासत से प्रेरित है 7 मई 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म भगवान कृष्ण पर आधारित एक महाकाव्य त्रयी की शुरुआत है। निर्माताओं ने अब फिल्म का एल्बम रिलीज कर दिया है जिसमें कुल 9 मधुर गीत शामिल है। एल्बम में शानदार गीतों का मिश्रण है जैसे श्यामल सांवरे जो एक महारास है और जिसे नीति मोहन और सोनू निगम ने गाया है। वहीं सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया ऊर्जावान गरबा गीत कृष्ण गोविंदा भी इसका हिस्सा है। बॉलीवुड टाइम में आज बस इतना ही। बाय बाय।
1: श्रोताओं, बॉलीवुड की खबरें तो आपने सुनी और इस बीच में हमारी श्रोता हेमलता जी ने लिखा कि जब वो ये गाना सुनती हैं, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, उनको ये बहुत ही अंदर तक हिला देता है। उनकी बहुत पसंदीदा गाना है उनके लिए। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक गाना सुनवा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। 70 के दशक की ये फिल्म, सचिन देव बर्मन की आवाज़ और उन्हीं का संगीत। फिल्म का नाम शायद आपको पता होगा। खैर, सुनिए ये गाना।

0: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
1: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं। SBS स्पोर्ट, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
2: SBS South Asian,

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
2: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
3: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, हमारे श्रोता राजेंद्र वोरा जी ने लिखा है कि वो आज जो भी हैं अपनी माँ की बदौलत हैं और माँ की एक सीख थी डू इट नाउ, आज भी वो नहीं भूले हैं, यानी उस पर पालन करने की कोशिश करते हैं। माँ को याद कर कर भावुक भी हम हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें अचानक से हंसी आ जाती है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई किस्सा ऐसा है कि जब आपको बहुत ज़ोर से डांट पड़ी हो लेकिन आज उसको याद कर मन यानी अंदर ही अंदर हंसी भी आती है कि कितनी मासूमियत भरी वो बात थी जिस पर डांट खा ली। आप उसको सोचिए और मुझे लिखिए। और आपको मैं सुनवा रही हूँ हमारे श्रोता राजेंद्र वोरा जी की ही पसंद पर ये गाना।

श्रोताओं, हमारे श्रोता कुमार जी ने याद किया पुरानी फिल्म राजा और रंग का एक गाना, तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है। तो देखिए, चलती फिरती आँखों से अजा देखी है मैंने, तो जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। मेरा ख्याल है ये हम सभी के विचार हैं। छोड़े जा रही हूँ आपको इसी गाने के साथ में। कल मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाओं के साथ अनीता बरार का नमस्कार।

0: Only party tune. Desi Dance Party on SBS South Asian.
1: लचके जब कमरिया हसारा जिला ही लमो।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: SBS South Asian's Desi Dance Party.
1: Yo, yo, honey singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार।

लटीना चिकनी चमेले कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

ते लड़ाई एनिक तू वेलिया उपसी फिर होगी मिस्टेक बट तू जान दी है मेरा लव नहीं फेक लव मैं तो सोना लबे जे तू मैनू छड़े पै जाने बवाड़े फिर हो जू ओदी हड्डी ब्रेक।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Hollywood Session on SBS South Asian.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

झूमे गाओ हरेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।